आता जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, मां कसम मारने का मजा।